दुख जाए दर्शन प्रसिया गुरु का जन्म भरण दुख जाए तन वाहे गुरु जी तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक कसम बारे निमक निमक तुम्हें प्रतपाल हो।

0: नायक कसम मारे निमक निमक तुम ही प्रतपाल हो, हम बार का तुम रे तारे जेवा एका कमन गुण कहिया बेसमार बेंत स्वामी तिरवंत ना किन्हीं लिया रहा कोट पराध हमारे खंड हो अटक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाब तुमरी शरणा तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुले रख राखना दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुले रख हो राख नार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खासा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी सोट महला पंजेवा गुरका सब रखवारे चौकी चो गिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मला पूर्ण पुरख विधाता रहा नानक प्रभा बनासी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद करह दरदासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पंजे वा ताती वाह न लग गई पार ब्रह्म शरण आई जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई राम।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सुरैनारे मन गुर मिल का सवारे रहाओ एव संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वै इहो रस अकथ कथा तिन जानी।

कहो नानक सब तेरी वडियाई मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है समुचे समाप्ति तो उपरंत आप जी दे सुख आसना दी सेवा होई है नाल नाल सोहिला साहिब जी दे जाप होए हन बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो होईया भुला बख्श लैनिया अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदिया ते वसाउना दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दरो घरो त्रुट के नाम दा रंग साधुआं दा संग निश्चय अभंग दी दात बख्शिश करके कृतार्थ करना महाराज चार पहर दिहाड़ा आप जी दे भाने अंदर बतीत होया है आई रैन अपने भाने अंदर बतीत करवाउनी अमृत वेले दे जागने बख्शिश करने अते नित नेम दियां दातां दे नाल आप जी ने निवाजना सतगुरु जी आप जी दे सुखासन तैयार हन कृपा करो आप अपने सुखासना ते विराजमान होवो संगतां नू खुशियां बख्शो अमृत वेले फिर प्रकाशमान होके संगतां नू खुले दर्शन दीदारे दे के कृतार्थ करना जी अपने तख्तां तों निज आसना नू जाण लई चाला पाउण दी आग्या बख्शो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक हुसी भी सच, सोचे सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रिया भार, सहस सियाण पालख हो ताइक न चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़े तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इकना हुक्मी बखशीस इक हुक्मी सदा पवाई है।

तीर्थ नहावा जेत सपावा विण भाणे के नहाए करी जेती सरठ उपाई वेखा विणकर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जी एक गुर की सिख सुनी।

अमल बख्शीस अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमलो अमल आख्या ना जाय आख आख रहे लवलाई आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करहे बख्याण आख बरमे आख इंद आख गोपी तय गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख।

जोर जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरति ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस धरती थाप रखी।

तथा सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िय है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद।

नाउ हि मरह न ठाकी जाहि जिनके राम वसह मन माहि तिथे भगत वसह के लो करह आनंद सच्चा मन सोई सचखंड वसह निरंकार कर कर विखे नदर निहाल।

0: हर हर जन के ऊट सतानी
1: हर पर ताप जावर न जाने
0: ओत पोत जन हर सराती
1: स्वर्ण समाध नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त भक्त नहीं शपे
0: हर की भक्त मुक्त बहु करी
1: नानक जन संगे ते तरे
0: पार जात हो हर को नाम
1: काम देन हर हर गुणगान
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुन दर्द दुख न
0: नाम की महिमा संत हृदय
1: संत पता दुर्त सब न
0: संत का संग बड़ पाग

0: पिंग पर्वत पर पवन करतार करुणा मैं दीन बेनती कर संग सहाई सुहावे न चीत बलुआ के ग्रह पीतर बस दृढ़ कर मन मन है प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोह एकाहु जुगत बिहाने कई जन्म
1: राख लियो अपन कर
0: तूठा कुर तुम पह अरदास।

0: प्रसाद सुगंधित तन लाभ है,
1: सिमरत परम गतवा
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर, जय प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: जय प्रसाद रंग रस पहुग,
1: नानक सदा ध्याय ध्यावन जोग,
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, जय प्रसाद सुख सेज सोई जय,
1: आठ पैर ताका जस गावी,
0: जय प्रसाद दुत सब को मन,
1: मुक्ता को जस रसन बखाने,
0: जय प्रसाद तिरो रहता ता
1: मान सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
0: प्रभु जी जब दरगह मान पावे,
1: नानक पासे ती कर जावे,
0: जे प्रसाद आरोग कंचन देही,
1: निवला बोत राम सने,
0: जे प्रसाद तेरा उला रहत,
1: मान सुख पावे हर जस कहत,
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके,
1: मान सानी पा ठाकर प्रावतांगे,
0: जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे,
1: मान सा सा सिमरो प्रभु,
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दी,
1: नानक ताके भक्त करे,
0: जे प्रसाद भूखन पहरी जे,
1: मानते सिमरत को आलस की
0: जय, प्रसाद अशुभ हस असवारी,
1: मानते प्रभु को कबू नाम विसारी,
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना,
1: राग प्रोए प्रभु अपने मना,
0: जिन तेरी मन बनत बनाई,
1: उठे वैसा
0: तिसे ध्याए, तिसे ध्याए जो एक लख है,
1: इहा उहा नानक तेरी रखे,
0: जय प्रसाद करह पुन बहु दान,
1: मान आठ पैर का तिसका ध्यान,
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
1: तिस प्रभु को साथ साथ चितारी,
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सोपरा सिमरो सदा अनूप,
0: जय प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सोपरा
0: प्रसाद तेरी पत्र है, जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद,
1: जय प्रसाद देखे विस्मय,
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहज वसना,
0: जय प्रसाद हस कर चल है,
1: जय प्रसाद सुपूरन भले,
0: जय प्रसाद परम गत पाव है,
1: जय प्रसाद सुख सहज समाय,
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग हो,
1: गुरु प्रसाद नानक मान जा,
0: जय प्रसाद तुम प्रकट संसार,
1: इस प्रा को मोना मना विसार,
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप,
1: मन मूर्त उदाक हो
0: जा, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
1: इसे जान मन सदा हजूरे,
0: जय प्रसाद तू पाव है साच,
1: रे मन मेरे तू दास राज,
0: जय प्रसाद सब की गत होई,
1: नानक जाप जपे जब सो,
0: आप जपाए जपे सो नाव,
1: आप गवाए सो हर गुण गाव,
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया ते कमल अवकाश,
0: प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सो।

0: की शोभा ब्रह्मा समान
1: सार्थ संग गोचर मिले
0: सार्थ संग सदा प्रभु
1: सार्थ संग अभय बस पंच
0: सार संग अमृत रस पुंज
1: सार संग हो सब की रीन
0: सार संग मनोहर
1: सार्थ संग न कतहु तावे।

0: नानक साध प्रभु बनया
1: साध के संग न कभू होता है
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बसत गोचर ल है
0: साधु के संग जार सहे
1: साध के संग बसे थान ऊचे
0: साधु के संग मैल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उधार
0: है।

0: संगम रत गुण गाए
1: साधक संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जना
1: साधक संग नहीं कछु कहाल
0: दासन भेट तो होत निहाल
1: साधक संग कलुखत हर
0: साके संग नाक पर हर
1: साधक संग इहा उहा सुहिला
0: सा संग बिछड़त हर मेला
1: जो छ सोई फल पावे
0: साधक संग ना व्यर्थ जावे
1: और ब्रह्म साध रुदवस
0: नानक उदरे साध सुन रस
1: साधक संग सुनो हर नाउ
0: संग हर के गुण गाओ
1: साधक संग ना मन ते बिसरे
0: संग सर्प निस्तर
1: साधक संग लगे परम मीठा
0: साधु के संग घाट घाटी
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: संगत पै हमारी
1: साधक संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पेटे संजोग
1: साधक महिमा भेद न जाने
0: चेता सुने ते ताब ख्याल
1: साधक उपमा ते गुण ते दूर
0: साधक उपमा रही भरपूर।

0: ज्ञानी के हुए सो भला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सफल भला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम बहुत त्याग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बना,
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन,
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई,
0: ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहि,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भीत,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देहि,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ढाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: जय कोट राजे रसपो
1: कई कोट पंखी सर्प पाए
0: कई कोट पाथर वृक ने बजाए
1: कई कोट पवन पानी बे संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दान इंद्र से शतर
1: सगल समग्री अपने सूद धार
0: नानक जे जिस पावे तिस ते निस्तार
1: कई कोट राजस्थान सातक
0: कई कोट वेद प्राण सिमर शास्त्र
1: कई कोट किए रत्न समुद्र
0: कई कोट नाना प्रकार जान
1: कई कोट किए चरजीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर
1: कई कोट जखे कंदर पिसा
0: कोट भूत प्रेत सुगर मरगा
1: सबते निरह सब होते दूर
0: नानका पिलिप्त रहा परपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट भव जो नहीं फिरे।

0: मानो की टेक पृथ्वी सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: जिसके दिया रहे अगाहे
1: तिसना लागे
0: मारे राखे एक आप
1: माने के कृष्णा ही हाथ
0: इसका हुकुम बूझ सुख हुए
1: इसका नाम रंगकांड परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक बिघन न लागे कोई
0: उस्त मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सद व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा से ला कर ले
0: नैनो पेखठा कुर का रंग
1: सांग बिन से सब सांग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: पाप जपिए हर वे
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर के नानक उज्जल मत
0: बड़भागी ते जान जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करह विचार
1: से तनवंत गनी संसार
0: मंतन मुख बोल है हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान
1: एतत कियो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक दिने निरंजन जाने
0: गुरु प्रसाद अपन आप सुजे
1: जिसकी जानो तिस नाम बुझे।

0: नाम रतन जन गुरुमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग
1: नाम
0: रस जो जंत्र पतान
1: नाम समान
0: उठत बैठत सोवत नाम
1: नानक जन के सत्कार
0: बोलो जस जे बाद नरात
1: प्रभु अपने जन की नींद
0: रह भगता तुम क्या चाहे
1: प्रभु अपने सो रह समाए
0: हुआ होवत सो जन
1: प्रभु अपने का हुक्म पछाने
0: जिसकी महिमा कौन बखाना
1: जिसका गुण का एक न जाने
0: आठ पहर प्रभु बस है हजूरी
1: नानक से जन बूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ली
1: माता ने अपना तिन जान दे
0: जन जन अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सर्व तो का दाता
0: जिसकी शरण सर्व सुख पावे
1: जिसके दासा पाप मटावे
0: अवर स्यान

0: नाम धारण
1: अवरो पाप संहित विसार हो
0: जनक अमृत में अर्थारो
1: करुण कारण सुप्रभु समर्थ
0: निर्कर कहो नाम हरवत
1: यह तम संत हो भगवंत
0: सांजना का निर्मल मन
1: एकास रखो मन माही
0: सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार कुंट उठता वह

0: प्रभु की दृष्ट महासुख हुई।
1: अरस
0: कैसे जन तृप्ता ने
1: डोला
0: सुबर प्रेम रस रंग
1: जय जाओ साध के
0: हरे शरण।

0: जब तहरिया अपन सुन समाद
1: विरोध के संकमार
0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: हर्ग सो को किसे व्याप्त
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: का के सोबत
0: अपन खेल आप वर्तीजा
1: करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल तनी
1: बंद मुझ को किसको गनी
0: जब एक है हर गमा पार
1: तब नरक सोर को कौन अवतार
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाई
1: सब सावत कहो के दिखाई
0: जब आप है आप अपनी ज्योत तर है
1: कवन डर कवन कद डर
0: अपन चलत आप करण हार
1: नानक ठाकर अगमा पार
0: अपना शीश अपन आसन
1: ते जन्म मर को कहा बनासन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोई
1: तब जम की त्रास कहो के सोई
0: जब अभिगत गोचर प्रभु एक
1: तब चेतर गोत किस पूछत लेख
0: जब हाथ निरंजन गोचर अगाधी
1: तब कौन छुटे कौन बंधन वादे
0: अपन आप ही चर्ज
1: नानक अपन रूप आप ही
0: परज निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: मैं मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन का मान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय छिन्न लागत को की
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे भूकम तृप्ता
0: करण करावन करण हार
1: नाने करते का नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन भाई वा मित्र सत भाई
0: जय सर्व कला आप है प्रवीण
1: वेग देव कहाँ कोची
0: जब अपन आप और तार
1: सगन अब सवन कहाँ विचार
0: जय अपन ऊच अपन आप नीरा
1: कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: निस्मन विषम रहे विस्माद
1: नानक अपनी का जानो आप
0: जय अशल शेद भेद समाया
1: मुहा किसे व्याप्त माया
0: आप उसको आप है आदिश
1: योगन का नाही परवेश
0: जय एक है एक एक भगवंता
1: कौन चिंत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: कौन कते कौन सुनने हारा
0: बहुत अंत ऊंच दे ऊंचा
1: नानक आप उसको आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर पंच आकार
1: योगन में के नाम विस्तार
0: आप पुरंत है पही कहावत
1: को नरको स्वर्ग विशाल
0: हाल जाल माया जंजाल
1: दुख
0: सुख मान अपमान अपन खेल आप कर देखे
1: तो नानके
0: जय भगत भगत है आप
1: संत प्रताप
0: दूपाह का आप है तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप कौतक करे आनंद चूज
1: आपे रस भोगन निर्जोग
0: जिस पावे तिस आपन नाम

0: कोई ना पहुंचना।
1: सर ऊपर ठाडा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्य पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दासन पे तो तरसे
1: चरण कमल जाकी अनूप
0: जंगल सुंदर हरू।
1: धन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रदान
1: जिस मन वसै सो होत निहाल।

0: आवन जानक खेल बनाया,
1: आज्ञाकारी किन्हि माया,
0: सबके मद लिप्त रहे,
1: जो कस कहना सो आपे गए,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
1: नानक जा पावे ता लय समाए,
0: जिसे होए सो नाही बुरा,
1: रे कहो किने कस करा,
0: आप ला कर तू ततनी की,
1: आपे जाने अपनी जी,
0: आप साच धारी सब साच,
1: बोध पोता पन संग्राज,
0: ताकि गत मत कही न जाए,
1: दूसर हो एता सोची पाए,
0: इसका किया सब परवान,
1: गुर प्रसाद नानक के ओ जान,
0: जो जाने तो सदा सुख होई।

0: जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लगा हरंग
0: जय जय शब्द नाह दवाजे
1: सुन सनंद करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत के माथी
1: नानक उतरे तन के साथे
0: सर्वजोग सन सरनी आई।

0: दया प्रवता हरी
1: नानक नेवी के बहमारी
0: प्रभु की उसद करहु संत मीत
1: सावधाने का करची
0: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मान बसे सो धन दान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: वार ना होवे आवंजान
0: हर खाट चले जन सोई
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम शांत हृदय नव निद

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याहिए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताहे। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी।

माला राग एक संग पंच बरंगन संग लप है अठ नंदन प्रथम राग पैरो वे करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुनया की गावे बंगली पुनस लिखी की पई बारी ए पैरव की पाचाओ नारी पंचम हर

बहरा खौखट ओ पहुरा नद गाई अष्ट माल को सक संग लाई पुन आयो हिंडूल पंच नार संग अष्ट सोत उठ है तान कलूल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पांच वार जा सुरमानंद पास कर आई चंद्र बिंब मंगलन सुहाई सरस बान अवाह बिनुदा गावे सरस बसंत कमुदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछिल।

बेशुमार अथाह अगणत अतुलय ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जियो प्यार अदब सहत गुरफते प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। क्रांतिकारी सूरमे मर्द अगंबड़े उस योधे का जन्मदिन मनाया जा रहा जिन्हें किन्ना समा पहला उन्हां पखंड करन वालियां दे गढ़ विच बैठ के सच दी आवाज बुलंद कीती। उन्हां दी रचना नूं पढ़दिआं कई बारी भुलेखा लग जांदा, कई सज्जन पुछ भी लैंदे जी वी ये शब्द भला दी दसवें पातशाह दा वी गगन दा मामा बाजियो परियो निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा। मैं मुबारकबाद दिना समूह प्रबंधकां नूं वी जिन्हां परिवारां ने संगतां ने रल मिल के उपराला कीता जी। बहुत घट गुरु घर इस पासे ध्यान इत्थे शलाघा योग उपराला कीता गया। अज भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा मनाउंदे होइआं गुरु के चरण परसे ने विचारां दी आरंभता तो पहलां मन की एकाग्रता लई एक बार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो।

जुग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान सत संगी जनों आओ गुरु चरणा विच बैठ के आप जी अज उचेचे तौर ते जो महान आत्मा रब्बी पुरख भगत कबीर साहब जी जिन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं संबंधित जिथे अमृत बाणी दे भोग पाए गए अमृत बाणी दा कीर्तन उथे आप जी भगत जी दे जीवन विच्चों

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग लपहे अठ नंदन प्रथम राग भैरो वै करे पंच राग नी संग चरहे प्रथम भैरवी बिलावली पुन्या की गावह बंगली पुन असलेकी की पही बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावहे बंगालम माध माधव गावह ललत बिलावल गावहे अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावहे गायन पात्र द्वितीया माल कौस क्या लापहे संग रागनी पंचो थापहे गुण करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंक मेवारा प्रबल चंड कौशक बहारा खो खट्यो पौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठहे तान कलोल गायन तार मिलावहि ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसा आहिरी लै भार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमा आनंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलम सुहाए सरस बान आहे बिनुदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीप की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदिया गुजरी संग दीप के थाप का लंका कुंतल रामा कमल कुसुम चंपक नामा गौरा आओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीप के जाना सब मिल श्री राग वह गावहे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावहे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावहे पांचो संग बरंगन लावहे सोरठ गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी उच्चै सुर सुआ हो पुन किनी

ठाकुर तुम। मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा में, कोई ना जानी तुमरा उच्चे ते ऊचा, सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो सो, तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास सदा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराउ श्री हर आई। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठा सब दुख जाई, तेग बहादुर सिमरै घर नौन दे आवै ताई, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहेगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जनहां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनरिठ कीता। तनहां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते, बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई

जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पथ दा राखा वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नीताणियां दे तान नी ओटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास बेनती है जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाही कल्ले आवे नानका सदे उठी जाही बीबी जस लीन कौर मिनहास सच्चे पातशाह जिनी आप जी ने सुवासा रूपी पूंजी बख्शिश पूर्ण करदिया होया अकाल चलाना कर गए सन अज उन्हां दे शरीर का अंतम संस्कार होया है उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते परिवार वालों रखे श्री सहज पाठ जी दे भोग पाए गए अमृत गुरबाणी दे कीर्तन होए पाठी सिंघां कोल पाठ करदिया भोग पाउंदिया सेवा करदिया बेअंत भुला बख्श देना जी विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना पिछे परिवार नूं भाणा मन दी दात बख्शनी अंग संग हो के सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने अपने चरणा कमलां दा प्यार नाम बाणी दा आसरा बख्शना जी परिवार वल्लों विछड़ी हुई रूह दे वास्ते आप जी नूं सुंदर पिछाके अंगीकार कराए लोक परलोक सेवकां दे पड़दे टकने सेवकां दीआं सेवावां भेटावां दर प्रवान करनियां आईआं संगतां दीआं हाजरियां भेटा प्रवान करनियां जी पढ़ी सुनी गुरबाणी दा भाव विछड़ी हुई रूह नूं पहुंचाउणा रूह दा भला करना जी आप जी दे हजूर आनंद साहिब बाणी दी अरदास कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे हुक्मनामे दी दात बख्श के सेवकां नूं कृतार्थ करो सुख होवे नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाह।

जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रह, ज्यों बालू की भीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मन हुना विसरा, ता सहला मरना होए। सो कहो टल गुर सेविया, अहन इस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु।

जन्म मरण दुख जाई हुआ सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया पुद डिठा सचे पादशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पादशाह सिर शाहां दा साहू जिस पास बैठिया सोही है।

सहज समावन संग रहाऊ, जन के चरण वसह मेरे हियर, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निध, नानक का सुख एही।